उजक्क मति न्यागो अध्याय झिङपेङ पत्के धाटकुदो छिपिङ संसार या जख पहाडे या चोक्या दया तगु सहर या त सुनान मखङ्क सुस्काते फैमखो छिगु बारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर धयादिगु खोख छि गनगन धो छि सक्ने संसारे या जख वैक स्वर्ग व पृथ्वी या सृष्टिकर्ता ख अथेसा छ सुयात विश्वास याए गुल्यौ मनुदेश छिगु बारे छु धाई धका विश्वास याना दियाला वा छिगु बारे परमेश्वर छु धाल धका विश्वास याना दिया गुम्ले गुम्ले मनुदेश व युगको ख्रिस्टियन देश न छि त निरुत्साहित यागु कुत याई इम्स छि त छि बाला मजु वा छि योग्य मजु धका धाई इम्स छि त बन्ना मियागु कुत याई यदि छि होसियार मजुल धासा इम्स छि त थ थम बामलाकु ताके इम्स छि त छि लाइक मजु धका बिचा याके बरु यीशु ख्रिष्ट सिदे का दिगु ज्याया माध्यम परमेश्वर छित व जित योग्य याना दे मति न्यागु अध्याय झिन्यागु झिन्खुगु पत्के धाटकुदो मत च्याका सुनान तोफुया तैमुखु बरु कोठा नियङ्क ज खेमा धका स्वादे या त तया तै छिपिन मनुदेगु न्युने थथे हे थिना छोने फेमा अले जक्क छिम्स यागु बालागु च्याख मनुते सखने अले स्वर्गीय चुना दिम परमेश्वर या त इम्स त धङ्गी यपिङ मेपी परमेश्वर झिगु बारे छुदाल धका झिसङ कोसनायामा झिगु सहर व नगरे तस्क सतके न्यासी हुने भने झिस थ त मेपिन त खने फैगु ज धका दाबियामा गर्व व साहस लिसे झिस निहोने मुना झिगु समुदाय मनु त झिगु ज च्याकेमा झी घमण्डी व अहङ्कारी जुगुने मुखो तर झिस शिवगुने परमेश्वर झित त द्वित देखुको ख गुखे स्वर्गीय चोम झी अब या त प्रशंसा यै अले वे कया माध्यम झिस मेपिनेगु नीति पिङ्गु ज्याया वे यै एफिसी निगु अध्याय झिगु पदके धाटौदो छादासा झिपे भिङ्गु ज्याया नीति ख्रिस्ट यशु पाखे सृष्टि याना त पि वेकया लाया सिप ख वेकल नापानिसे देखा तगु भिङ्गु ज्या झिगु पाखे जी फेमा धका झित तयारियाना दिगु ख यो पिनियन मिपि परमेश्वर छित देखुगु निपुण कलाया बालागु टुक्रा ख वो दक्ले त धम कलाकार ख अले झी वेकया सृष्टि ख छि सुख धका गब्ले लज्जित जुई मते छादासा परमेश्वर छि नाप लज्जित जुई मुखो वैकल छि त मतिना याना दि अले वैकल छि संसारे खने देख थगु मतिना किनेमा धका इच्छा याना दि थौयागु वचन निना दिगुनी छि सकसित न परमेश्वर स्वाभिमा जय मसी यनामिपि छिम्स नकतिनी हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी लपुकेना दिम सोमन भिक्टर चोयादीको हसना झिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ झिगु विश्वासके चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर 2 98 65 33 39 98 65 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसी।

तका थत विश्वास याएगु जक्कख मती न्यागु अध्यायु झिङपेङगु पत्के धाटगुदु छिपी संसार या जख पहाडे या चोक्या दया तगु सहर या त सुनान मखङ्क सुस्काते फै मखु छिगु बारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर धयादिगु ख थोख छि गन गन दु छि सक्ने संसारे या जख वैक स्वर्ग वा पृथ्वी या सृष्टिकर्ता ख अथेसा छ सुया त विश्वास याए गुल्यौ मनुदेस छिगु बारे छु धाई धका विश्वास याना दियाला वा छिगु बारे परमेश्वर छु धाल धका विश्वास याना दिया गुब्ले गुब्ले मनुदेस वो यक्कु ख्रिस्टेन देस न छि त निरुत्साहित यागु कुत याई इम्स छि त छि बाला मजु वा छि योग्य मजु धका धाई इम्स छि त बन्नाम यागु कुत याई यदि छि होसियार मजुल धासा इम्स छि त थम बामलाकु ताके इम्स छि त छि लायक मजु धका बिचा याके बरु यीशु ख्रिस्ट सिधे का दिगु ज्याया माध्यम परमेश्वर छित वो जित योग्य याना दे मती न्यागु अध्यायु झिन्यागु झिन्खुगु पत्के धाटगुदु म त ज्याका सुनान तोफुया तैमुखु बरु कोठा न्याङ्क ज खेमा धका स्वादे या तया तै छिपिन मनुदेगु न्युहने थथे हे छिना छोने फेमा अले जक्क छिमस यागु बालागु ज्याख मनुते सखने अले स्वर्गीय चुना दिम परमेश्वर या त इम्स त धङ्की यपिनियन मेपि परमेश्वर झिगु बारे छुदाल धका झिस घोषणा यामा झिगु सहर व नगरे तस्क सतके न्यासी बुने बोले झिस थ त मेपिन त खने फैगु ज धका दाबियामा गर्व व साहस लिसे झिस निहोने मुना झिगु समुदाय मनु त झिगु ज च्याकीमा झी घमण्डी वा अहंकारी जुगुने मुखो तर झिस सिउगुने परमेश्वर झी त द्वित देखुगु ख गुखे स्वर्गीय चोम झी अब या त प्रशंसा यै अले वे कया माध्यम झिस मेपिनिगु नीति भिङ्गु ज्याया वे यै एफिसी निगु अध्याय झिगु पदके तयाटौदु छा दासा झिपे भिङ्गु ज्याया नीति ख्रिस्ट येशु पाखे सृष्टि याना तपि वेकया लाया सिप ख वेकल नापा निसे देखा तकु भिङ्गु ज्या झिगु पाखे जी फेमा धका चित तयारियाना दिगु ख यो पिनियन मिपि परमेश्वर छित देखुगु निपुण कलाया बालागु टुक्रा ख वो दक्ले तदम कलाकार ख अले झी वेकया सृष्टि ख छि सुख धका गोब्ले लज्जित जुमते छादासा परमेश्वर छि नाप लज्जित जुमुखो वैकल छि त मथिना याना दि अले वैकल छि संसारे खने देख थगु मथिना किनेमा धका इच्छा याना दि थौयागु वचन येना दिगुने छि सकसित न परमेश्वर सवाबीमा जयमसी हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी लपु केनादिम सोमन भिक्टर चोयादीको हसना झिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ झिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तयादिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर 2 98 65 33 39 98 65 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जयमसी।